0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंच और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में सोमवार 10 अगस्त को 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। नवीनतम जानकारी के अनुसार मरने वालों की संख्या 265 हो गई है। इस आपदा में 3,494 लोग घायल हुए हैं और 496 लोग अभी भी लापता हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय OCHA और उसके साझेदार सरकार के नेतृत्व में चल रहे राहत और बचाव कार्यों में लगातार सहयोग दे रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में आपात सामग्री, अतिरिक्त कर्मचारी और अन्य संसाधन भेजे जा रहे हैं। OCHA के प्रवक्ता ने कहा कि करीब 5,000 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 387 पूरी तरह नष्ट हो गए हैं और 61 इमारतें ढह गई हैं, जबकि 550 से अधिक शैक्षणिक संस्थान, 24 स्वास्थ्य केंद्र और 350 से अधिक सामुदायिक केंद्र भी प्रभावित हुए हैं। कोलंबियाई भूवैज्ञानिक सेवा के अनुसार भूकंप का केंद्र करीब 103 किलोमीटर की गहराई पर था। यह इस सदी में देश में दर्ज सबसे शक्तिशाली भूकंप है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने गत बुधवार को कीव पर इस वर्ष हुए सबसे घातक रूसी हमलों की निंदा की। रात भर हुए इन हमलों से 17 लोगों की मौत हो गई और नागरिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता समन्वय कार्यालय OCHA के अनुसार दोनेस्क में प्रभावित लोगों को आश्रय, मनोसामाजिक सहायता और अन्य राहत सहायता पहुंचाई जा रही है। इस बीच रूस और यूक्रेन ने लंबी दूरी वाली हवाई हमले तेज कर दिए हैं। रूस शहरों और ऊर्जा ढांचे को निशाना बना रहा है, जबकि यूक्रेन तेल रिफाइनरियों और रसद केंद्रों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन में 1,08,00,000 लोगों की मानवीय सहायता की जरूरत है, जबकि 38,00,000 लोग अब भी देश के भीतर विस्थापित हुए हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: यूएन के अनुसार जुलाई यूक्रेन में नागरिकों के लिए अप्रैल 2022 के बाद सबसे घातक महीना रहा है। इस वर्ष के पहले 6 महीनों में लगभग 1,400 नागरिकों की मौत और करीब 8,000 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा, इन ताज़ा हमलों से आबादी वाले इलाकों पर हमलों में बढ़ोतरी का चिंताजनक रुझान दिखता है। खबरों के अनुसार यूक्रेन में नागरिक हताहतों की संख्या रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई है और घरों व नागरिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। रूसी संघ में भी ऐसे हमले बढ़ रहे हैं। नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का स्पष्ट उल्लंघन है और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के उपप्रवक्ता फरहान हक के शब्द।
2: अक्टूबर 2023 में हमास के नेतृत्व में इसराइल पर हुए घातक हमलों के बाद शुरू हुए गाजा युद्ध ने एक गंभीर मानवीय संकट पैदा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कहा है कि गाजा में युद्ध विराम लागू होने के बावजूद बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। युद्ध विराम के बाद गाजा में इसराइली हमलों में 1,209 लोग मारे गए हैं और 3,943 घायल हुए हैं। कुपोषित माताओं में समय से पहले प्रसव के मामले बढ़ रहे हैं। राहत एजेंसियों ने गाजा में अधिक सहायता पहुंचाने की अपील की है। बच्चों की एक पूरी पीढ़ी शिक्षा और बुनियादी सेवाओं से वंचित है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: यूनिसेफ ने कहा है कि गाजा में युद्ध विराम लागू होने के बावजूद बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। एजेंसी के अनुसार पिछले अक्टूबर में युद्ध विराम के बाद से 300 दिनों में कम से कम 300 बच्चे मारे गए हैं। सैकड़ों बच्चे घायल भी हुए हैं और कई परिवार ध्वस्त इमारतों, मलबे और कचरे के बीच शरण लेने को मजबूर हैं। यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि बच्चे कुपोषण, बीमारियों, असुरक्षित पानी और बदहाल साफ सफाई से जूझ रहे हैं। भूखी और थकी माताएं कुपोषित बच्चों को लेकर स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंच रही हैं, जबकि समय से पहले जन्म के मामले भी बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता समन्वय कार्यालय ने कहा है कि गाजा में आमजन अब भी सुरक्षित नहीं है। घरों, स्कूलों और तिरपाल से बनी अस्थायी कक्षाओं पर भी हमलों की जानकारी मिली है। पश्चिमी तट में भी 80 से अधिक फलस्तीनी स्कूलों को गिराए जाने या उनसे जुड़े आदेशों पर चिंता जताई गई है। सप्ताहांत में गाजा पर इसराइली हमलों में 25 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। अलक्सा अस्पताल के पास चिकित्सा सामग्री भी नष्ट हुई। WFP के अनुसार ऊंची कीमतों के कारण हर 10 में से 4 परिवार बुनियादी खाद्य सामग्री नहीं खरीद पा रहे हैं।
2: संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने बताया कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला बुडीबुगियो वायरस का संक्रमण विस्थापित समुदायों तक पहुंच गया है। पूर्वी DR कोंगो में 15 मई को घोषित इबोला प्रकोप अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला प्रकोप है। इतुरी, नॉर्थ कीवू, साउथ कीवू, होत उले और चोपो प्रांतों में इबोला के मामले सामने आए हैं। इन प्रांतों में लगभग 44 लाख आंतरिक रूप से विस्थापित लोग रह रहे हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला प्रकोप तेजी से फैल रहा है और अब विस्थापित समुदायों तक पहुंच गया है। UNHCR के अनुसार इतुरी प्रांत में कम से कम 5 विस्थापन शिविरों में इबोला के मामले सामने आए हैं। अब तक आंतरिक रूप से विस्थापित 19 लोग संक्रमित हुए हैं और 5 की मौत हुई है। WHO ने कहा है कि बुंडी बुग्यो प्रकार के लिए संभावित पहले टीके के परीक्षण शुरू हो गए हैं। साथ ही इतुरी प्रांत में नए उपचार और दवाओं के क्लिनिकल परीक्षण भी चल रहे हैं। बुनिया में 100 बिस्तरों वाला नया इबोला उपचार केंद्र खोला गया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां जांच, निगरानी, उपचार, स्वच्छता सामग्री, खाद्य सहायता और समुदायों तक सही जानकारी पहुंचाने के प्रयास बढ़ा रही हैं।
2: भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा नदी के तट पर 1977 के विनाशकारी दिवी सीमा चक्रवात के दौरान लगभग 31 गांव जलमग्न हो गए थे। प्राकृतिक सुरक्षा कवर न होने के कारण समुद्री पानी भीतर तक पहुंच गया था और हजारों लोगों की जान व आजीविकाएं चली गई। इसके बाद वहां मैनग्रोव वन पनपे। मैनग्रोव वनों की बहाली से घरों और आजीविकाओं के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवर तैयार किया गया। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: भारत के आंध्र प्रदेश में मैनग्रोव वनों की बहाली तटीय समुदायों के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच तैयार कर रही है। अब UNDP समर्थित एक्रिक परियोजना के तहत कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य में 694 हेक्टेयर क्षतिग्रस्त दलदली भूमि को बहाल किया गया है। मैनग्रोव तटीय कटाव और तूफानी लहरों का असर कम करते हैं, साथ ही वे केकड़ों, झींगों और मछलियों के लिए प्रजनन स्थल बनकर स्थानीय मछुआरा परिवारों की आजीविका को भी सहारा देते हैं।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा लियो चौदवे ने आप्रवासियों और शरणार्थियों को समर्पित 112वें दिवस के उपलक्ष में एक संदेश प्रकाशित कर प्रवसन और पलायन के अनुभव में सीधे शामिल नाबालिगों की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। कलीसिया द्वारा घोषित आप्रवासियों और शरणार्थियों को समर्पित 112वां दिवस इस वर्ष 27 सितंबर को मनाया जा रहा है। संदेश में संत पापा लिखते हैं कि आप्रवास के वैश्विक आंदोलनों के भीतर नाबालिग सबसे कमजोर समूह हैं। वे ठोस चेहरे हैं जिनके पास अनूठी कहानियां हैं और जो हमारे अंतःकरण को पुकारते हैं। प्रतिवर्ष लाखों बच्चे और किशोर युद्ध, गरीबी, हिंसा, पर्यावरणीय आपदाओं और अन्य त्रासदियों के कारण अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। दुर्भाग्यवश उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस आपदा के आर्थिक, राजनैतिक और सैन्य परिणाम बहुत अधिक हैं। आप्रवासी बच्चों की पीड़ा उनके पुनर्वास से समाप्त नहीं होती। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने माता पिता, भाइयों, बहनों और दोस्तों को खो दिया है और जिन्होंने हिंसा के अकथनीय कृत्यों को देखा है। संत पापा स्मरण दिलाते हैं कि ऐसे कई बच्चे हैं जो अपने माता पिता के साथ यात्रा करते हुए भी चरम और दर्दनाक परिस्थितियों के संपर्क में आ जाते हैं। वे लंबे समय तक अपने परिवारों से अलग रहते हैं और अलगाव की पीड़ा को सहन करते हुए उनके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सरकारों का आह्वान किया कि वे इन नाबालिगों की दुखद स्थिति को न भुलाएं। 2017 में आप्रवासियों और शरणार्थियों को समर्पित दिवस पर प्रकाशित स्वर्गीय संत पापा फ्रांसिस के संदेश का उल्लेख कर संत पापा लियो ने लिखा, प्रवासी बच्चे तीन तरह से रक्षाहीन हैं। वे बच्चे हैं, वे विदेशी हैं और उनके पास खुद को बचाने का कोई साधन नहीं है। मैं सभी से उन लोगों की मदद करने के लिए कहता हूं जो विभिन्न कारणों से अपनी मातृभूमि से दूर रहने के लिए मजबूर हैं और अपने परिवारों से अलग हो गए हैं। संत पापा लियो आगे लिखते हैं, इतने अंधेरे के बीच एकजुटता के प्रकाश की कमी नहीं है। व्यक्ति, परिवार, नागर संस्थान और कलीसियाई समुदाय दूसरी तरफ से नहीं गुजरना चुनते, बल्कि निस्सहायों की सहायता को आगे आते हैं। हम उन परिवारों की ओर अपने विचार अभिमुख करें जो इन बच्चों को परिवार के चूल्हे की गर्मी बहाल करने के लिए अपने घरों के दरवाजे खोलते हैं। शिक्षक जो स्वागत केंद्रों में सेवा करते हैं, स्वयं सेवक और राहत कर्मी जो प्रतिदिन प्रवसन मार्गों और हमारे शहरों में इन बच्चों के अदृश्य घावों को ठीक करने के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। वे इस प्रतिबद्धता की गवाही देते हैं कि प्रेम उदासीनता पर विजय प्राप्त कर सकता है। संत पापा ने सभी को आमंत्रित किया कि वे आप्रवासियों और शरणार्थियों तथा विशेष रूप से उनके बच्चों के लिए नए शैक्षिक और आध्यात्मिक मार्ग खोजें तथा मानव प्रतिष्ठा के अनुकूल उन्हें पुनर्वास का पूरा मौका प्रदान करें। वैटिकन स्थित दिव्य भक्ति और संस्कार संबंधी परम धर्म पीठीय विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल आर्थर रोच को एक पत्र प्रेषित कर संत पापा लियो ने अमेरिका के ओरेगन में माउंट आंगेल मठ में धर्म विधिक प्रशिक्षण पर एकत्र समस्त धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और अन्य प्रतिभागियों के प्रति हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित की। संत पापा ने लिखा, पूजन पद्धति और धर्म विधिक प्रार्थनाओं तथा आध्यात्मिक साधना पर प्रकाशित अपने प्रेरित पत्र देजिदेरियो देजिदेरावी में संत पापा फ्रांसिस ने इस तथ्य पर बल दिया है कि समस्त विश्व में व्याप्त कलीसिया के गिरजाघरों की पूजन पद्धति और धर्म विधिक प्रार्थनाओं तथा आध्यात्मिक साधना को नवीन स्फूर्ति से अनुप्राणित करने के लिए पुरोहितों और लोकधर्मी विश्वासियों को ध्यानपूर्वक और निरंतर प्रशिक्षण देने की जरूरत है। तदुपरांत उन्होंने हमें याद दिलाया कि इस तरह का प्रशिक्षण कुछ विशेषज्ञों के लिए विशेषज्ञता या प्रवीणता हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह समस्त ईश प्रजा की आंतरिक प्रकृति है। संत पापा ने लिखा कि इसलिए मैं आपको यीशु मसीह के शरीर में हर स्तर पर पूजन पद्धति और आराधना विधि की तैयारी के लिए ठोस रास्ते खोजने के लिए बढ़ावा देता हूँ। साथ ही हमें उन लोगों की तैयारी में प्राथमिकता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जिन्हें पवित्र आदेशों के संस्कार के आधार पर मिस्टर गॉग अर्थात
रहस्य दीक्षा पाने वाले विश्वासी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे पहला व्यावहारिक अभ्यास रविवारीय ख्रीस्तियागों के लिए लोगों को एकत्र करना होता है। ये समारोह धर्म विधिक वर्ष की लय पर आधारित हैं, जिसके केंद्र में है पास्काई रहस्य। संत पापा ने आगे लिखा कि इस तरह सही शिक्षा और श्रद्धापूर्वक आराधना अर्चना से कैथलिक विश्वासी धर्म विधिक प्रार्थनाओं के लिए तत्पर रहेंगे। इसके अलावा पवित्र रहस्यों के सम्मानजनक और गरिमापूर्ण समारोह को बढ़ावा देने के लिए हमें अनुमोदित पाठों और निर्देशों के प्रति वफादारी की जरूरत पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि यह सम्मान ईश्वर के प्रति खुलेपन और विश्वास की आंतरिक मनोवृत्ति से प्रस्फुटित होवे तथा कलीसियाई सहभागिता के प्रति विनम्रता और सत्यनिष्ठा दर्शाए। म्यांमार में येसु धर्म समाज के प्रांताध्यक्ष फादर गिरीश संत्यागो कहते हैं कि वासो बौद्ध काल संघर्ष से जूझ रहे म्यांमार में ख्रिस्तानुयायियों और बौद्ध धर्मानुयायियों को संवाद, दया और पुनर्मिलन की ओर एक साझा रास्ता दिखा सकता है। बौद्ध वासा गहन ध्यान, आध्यात्मिक सोच और भिक्षुओं को प्रसाद चढ़ाने की अवधि की शुरुआत का प्रतीक है। बारिश के मौसम में 3 महीने तक चलने वाला वासो आम तौर पर जून या जुलाई माह में पूर्णिमा के दिन शुरू होता है। फादर गिरीश ने कहा कि लगातार राजनीतिक अस्थिरता और मानवीय चुनौतियों का सामना कर रहे म्यांमार में बौद्ध धर्मानुयायियों का वासा काल अंतरधार्मिक मुलाकातों और साझा शांति निर्माण के लिए एक सार्थक पुल बन सकता है। और रोम स्थित संत इजिदियो समुदाय ने युद्ध और संघर्षों से घिरे विश्व में इटली के कई शहरों में बेघर लोगों, शरणार्थियों और वयोवृद्धों के लिए 15 अगस्त को मां मरियम के स्वर्गोत्थान महापर्व के दिन पारंपरिक मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था की है। संत इजिदियो लोकोपकारी समुदाय के लिए 15 अगस्त के दिन कई ऐसी पहलें शुरू की गई हैं जो इन दिनों के अकेलेपन और असहनीय गर्मी सहने वालों तथा निर्धनों, बेघर लोगों और सबसे कमजोर लोगों पर अधिक ध्यान देने की अपील करेंगी। संत इजिदियो समुदाय की विज्ञप्ति के अनुसार ऐसे विश्व में जहां सबसे कमजोर लोगों को नजरअंदाज करने का खतरा बना हुआ है, यह पहल युद्ध और संघर्ष के समय में शांति और एकजुटता का संदेश प्रदान करेगी। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंच और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में सोमवार 10 अगस्त को 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। नवीनतम जानकारी के अनुसार मरने वालों की संख्या 265 हो गई है। इस आपदा में 3,494 लोग घायल हुए हैं और 496 लोग अभी भी लापता हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय OCHA और उसके साझेदार सरकार के नेतृत्व में चल रहे राहत और बचाव कार्यों में लगातार सहयोग दे रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में आपात सामग्री, अतिरिक्त कर्मचारी और अन्य संसाधन भेजे जा रहे हैं। OCHA के प्रवक्ता ने कहा कि करीब 5,000 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 387 पूरी तरह नष्ट हो गए हैं और 61 इमारतें ढह गई हैं, जबकि 550 से अधिक शैक्षणिक संस्थान, 24 स्वास्थ्य केंद्र और 350 से अधिक सामुदायिक केंद्र भी प्रभावित हुए हैं। कोलंबियाई भूवैज्ञानिक सेवा के अनुसार भूकंप का केंद्र करीब 103 किलोमीटर की गहराई पर था। यह इस सदी में देश में दर्ज सबसे शक्तिशाली भूकंप है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने गत बुधवार को कीव पर इस वर्ष हुए सबसे घातक रूसी हमलों की निंदा की। रात भर हुए इन हमलों से 17 लोगों की मौत हो गई और नागरिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता समन्वय कार्यालय OCHA के अनुसार दोनेस्क में प्रभावित लोगों को आश्रय, मनोसामाजिक सहायता और अन्य राहत सहायता पहुंचाई जा रही है। इस बीच रूस और यूक्रेन ने लंबी दूरी वाली हवाई हमले तेज कर दिए हैं। रूस शहरों और ऊर्जा ढांचे को निशाना बना रहा है, जबकि यूक्रेन तेल रिफाइनरियों और रसद केंद्रों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन में 1,08,00,000 लोगों की मानवीय सहायता की जरूरत है, जबकि 38,00,000 लोग अब भी देश के भीतर विस्थापित हुए हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: यूएन के अनुसार जुलाई यूक्रेन में नागरिकों के लिए अप्रैल 2022 के बाद सबसे घातक महीना रहा है। इस वर्ष के पहले 6 महीनों में लगभग 1,400 नागरिकों की मौत और करीब 8,000 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा, इन ताज़ा हमलों से आबादी वाले इलाकों पर हमलों में बढ़ोतरी का चिंताजनक रुझान दिखता है। खबरों के अनुसार यूक्रेन में नागरिक हताहतों की संख्या रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई है और घरों व नागरिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। रूसी संघ में भी ऐसे हमले बढ़ रहे हैं। नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का स्पष्ट उल्लंघन है और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के उपप्रवक्ता फरहान हक के शब्द।
2: अक्टूबर 2023 में हमास के नेतृत्व में इसराइल पर हुए घातक हमलों के बाद शुरू हुए गाजा युद्ध ने एक गंभीर मानवीय संकट पैदा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कहा है कि गाजा में युद्ध विराम लागू होने के बावजूद बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। युद्ध विराम के बाद गाजा में इसराइली हमलों में 1,209 लोग मारे गए हैं और 3,943 घायल हुए हैं। कुपोषित माताओं में समय से पहले प्रसव के मामले बढ़ रहे हैं। राहत एजेंसियों ने गाजा में अधिक सहायता पहुंचाने की अपील की है। बच्चों की एक पूरी पीढ़ी शिक्षा और बुनियादी सेवाओं से वंचित है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: यूनिसेफ ने कहा है कि गाजा में युद्ध विराम लागू होने के बावजूद बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। एजेंसी के अनुसार पिछले अक्टूबर में युद्ध विराम के बाद से 300 दिनों में कम से कम 300 बच्चे मारे गए हैं। सैकड़ों बच्चे घायल भी हुए हैं और कई परिवार ध्वस्त इमारतों, मलबे और कचरे के बीच शरण लेने को मजबूर हैं। यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि बच्चे कुपोषण, बीमारियों, असुरक्षित पानी और बदहाल साफ सफाई से जूझ रहे हैं। भूखी और थकी माताएं कुपोषित बच्चों को लेकर स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंच रही हैं, जबकि समय से पहले जन्म के मामले भी बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता समन्वय कार्यालय ने कहा है कि गाजा में आमजन अब भी सुरक्षित नहीं है। घरों, स्कूलों और तिरपाल से बनी अस्थायी कक्षाओं पर भी हमलों की जानकारी मिली है। पश्चिमी तट में भी 80 से अधिक फलस्तीनी स्कूलों को गिराए जाने या उनसे जुड़े आदेशों पर चिंता जताई गई है। सप्ताहांत में गाजा पर इसराइली हमलों में 25 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। अलक्सा अस्पताल के पास चिकित्सा सामग्री भी नष्ट हुई। WFP के अनुसार ऊंची कीमतों के कारण हर 10 में से 4 परिवार बुनियादी खाद्य सामग्री नहीं खरीद पा रहे हैं।
2: संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने बताया कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला बुडीबुगियो वायरस का संक्रमण विस्थापित समुदायों तक पहुंच गया है। पूर्वी DR कोंगो में 15 मई को घोषित इबोला प्रकोप अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला प्रकोप है। इतुरी, नॉर्थ कीवू, साउथ कीवू, होत उले और चोपो प्रांतों में इबोला के मामले सामने आए हैं। इन प्रांतों में लगभग 44 लाख आंतरिक रूप से विस्थापित लोग रह रहे हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला प्रकोप तेजी से फैल रहा है और अब विस्थापित समुदायों तक पहुंच गया है। UNHCR के अनुसार इतुरी प्रांत में कम से कम 5 विस्थापन शिविरों में इबोला के मामले सामने आए हैं। अब तक आंतरिक रूप से विस्थापित 19 लोग संक्रमित हुए हैं और 5 की मौत हुई है। WHO ने कहा है कि बुंडी बुग्यो प्रकार के लिए संभावित पहले टीके के परीक्षण शुरू हो गए हैं। साथ ही इतुरी प्रांत में नए उपचार और दवाओं के क्लिनिकल परीक्षण भी चल रहे हैं। बुनिया में 100 बिस्तरों वाला नया इबोला उपचार केंद्र खोला गया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां जांच, निगरानी, उपचार, स्वच्छता सामग्री, खाद्य सहायता और समुदायों तक सही जानकारी पहुंचाने के प्रयास बढ़ा रही हैं।
2: भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा नदी के तट पर 1977 के विनाशकारी दिवी सीमा चक्रवात के दौरान लगभग 31 गांव जलमग्न हो गए थे। प्राकृतिक सुरक्षा कवर न होने के कारण समुद्री पानी भीतर तक पहुंच गया था और हजारों लोगों की जान व आजीविकाएं चली गई। इसके बाद वहां मैनग्रोव वन पनपे। मैनग्रोव वनों की बहाली से घरों और आजीविकाओं के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवर तैयार किया गया। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: भारत के आंध्र प्रदेश में मैनग्रोव वनों की बहाली तटीय समुदायों के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच तैयार कर रही है। अब UNDP समर्थित एक्रिक परियोजना के तहत कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य में 694 हेक्टेयर क्षतिग्रस्त दलदली भूमि को बहाल किया गया है। मैनग्रोव तटीय कटाव और तूफानी लहरों का असर कम करते हैं, साथ ही वे केकड़ों, झींगों और मछलियों के लिए प्रजनन स्थल बनकर स्थानीय मछुआरा परिवारों की आजीविका को भी सहारा देते हैं।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा लियो चौदहवें ने आप प्रवासियों और शरणार्थियों को समर्पित 112वें दिवस के उपलक्ष में एक संदेश प्रकाशित कर प्रवसन और पलायन के अनुभव में सीधे शामिल नाबालिगों की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। कलीसिया द्वारा घोषित आप प्रवासियों और शरणार्थियों को समर्पित 112वां दिवस इस वर्ष 27 सितंबर को मनाया जा रहा है। संदेश में संत पापा लिखते हैं कि आप प्रवास के वैश्विक आंदोलनों के भीतर नाबालिग सबसे कमजोर समूह हैं। वे ठोस चेहरे हैं जिनके पास अनूठी कहानियां हैं और जो हमारे अंतःकरण को पुकारते हैं। प्रतिवर्ष लाखों बच्चे और किशोर युद्ध, गरीबी, हिंसा, पर्यावरणीय आपदाओं और अन्य त्रासदियों के कारण अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। दुर्भाग्यवश उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस आपदा के आर्थिक, राजनैतिक और सैन्य परिणाम बहुत अधिक हैं। आप्रवासी बच्चों की पीड़ा उनके पुनर्वास से समाप्त नहीं होती। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने माता पिता, भाइयों, बहनों और दोस्तों को खो दिया है और जिन्होंने हिंसा के अकथनीय कृत्यों को देखा है। संत पापा स्मरण दिलाते हैं कि ऐसे कई बच्चे हैं जो अपने माता पिता के साथ यात्रा करते हुए भी चरम और दर्दनाक परिस्थितियों के संपर्क में आ जाते हैं। वे लंबे समय तक अपने परिवारों से अलग रहते हैं और अलगाव की पीड़ा को सहन करते हुए उनके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सरकारों का आह्वान किया कि वे इन नाबालिगों की दुखद स्थिति को न भुलाएं। 2017 में आप्रवासियों और शरणार्थियों को समर्पित दिवस पर प्रकाशित स्वर्गीय संत पापा फ्रांसिस के संदेश का उल्लेख कर संत पापा लियो ने लिखा, प्रवासी बच्चे तीन तरह से रक्षाहीन हैं। वे बच्चे हैं, वे विदेशी हैं और उनके पास खुद को बचाने का कोई साधन नहीं है। मैं सभी से उन लोगों की मदद करने के लिए कहता हूँ जो विभिन्न कारणों से अपनी मातृभूमि से दूर रहने के लिए मजबूर हैं और अपने परिवारों से अलग हो गए हैं। संत पापा लियो आगे लिखते हैं, इतने अंधेरे के बीच एकजुटता के प्रकाश की कमी नहीं है। व्यक्ति, परिवार, नागर संस्थान और कलीसियाई समुदाय दूसरी तरफ से नहीं गुजरना चुनते, बल्कि निस्सहायों की सहायता को आगे आते हैं। हम उन परिवारों की ओर अपने विचार अभिमुख करें जो इन बच्चों को परिवार के चूल्हे की गर्मी बहाल करने के लिए अपने घरों के दरवाजे खोलते हैं। शिक्षक जो स्वागत केंद्रों में सेवा करते हैं, स्वयंसेवक और राहत कर्मी जो प्रतिदिन प्रवसन मार्गों और हमारे शहरों में इन बच्चों के अदृश्य घावों को ठीक करने के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। वे इस प्रतिबद्धता की गवाही देते हैं कि प्रेम उदासीनता पर विजय प्राप्त कर सकता है। संत पापा ने सभी को आमंत्रित किया कि वे आप्रवासियों और शरणार्थियों तथा विशेष रूप से उनके बच्चों के लिए नए शैक्षिक और आध्यात्मिक मार्ग खोजें तथा मानव प्रतिष्ठा के अनुकूल उन्हें पुनर्वास का पूरा मौका प्रदान करें। वैटिकन स्थित दिव्य भक्ति और संस्कार संबंधी परम धर्म पीठीय विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल आर्थर रोच को एक पत्र प्रेषित कर संत पापा लियो ने अमेरिका के ओरेगन में माउंट आंगेल मठ में धर्म विधिक प्रशिक्षण पर एकत्र समस्त धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और अन्य प्रतिभागियों के प्रति हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित की। संत पापा ने लिखा, पूजन पद्धति और धर्म विधिक प्रार्थनाओं तथा आध्यात्मिक साधना पर प्रकाशित अपने प्रेरित पत्र देजिदेरियो देजिदेरावी में संत पापा फ्रांसिस ने इस तथ्य पर बल दिया है कि समस्त विश्व में व्याप्त कलीसिया के गिरजाघरों की पूजन पद्धति और धर्म विधिक प्रार्थनाओं तथा आध्यात्मिक साधना को नवीन स्फूर्ति से अनुप्राणित करने के लिए पुरोहितों और लोकधर्मी विश्वासियों को ध्यानपूर्वक और निरंतर प्रशिक्षण देने की जरूरत है। तदुपरांत उन्होंने हमें याद दिलाया कि इस तरह का प्रशिक्षण कुछ विशेषज्ञों के लिए विशेषज्ञता या प्रवीणता हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह समस्त ईश प्रजा की आंतरिक प्रकृति है। संत पापा ने लिखा कि इसलिए मैं आपको यीशु मसीह के शरीर में हर स्तर पर पूजन पद्धति और आराधना विधि की तैयारी के लिए ठोस रास्ते खोजने के लिए बढ़ावा देता हूँ। साथ ही हमें उन लोगों की तैयारी में प्राथमिकता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जिन्हें पवित्र आदेशों के संस्कार के आधार पर मिस्टर गॉग अर्थात
रहस्य दीक्षा पाने वाले विश्वासी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे पहला व्यावहारिक अभ्यास रविवारीय ख्रीस्तियागों के लिए लोगों को एकत्र करना होता है। ये समारोह धर्म विधिक वर्ष की लय पर आधारित हैं, जिसके केंद्र में है पास्काई रहस्य। संत पापा ने आगे लिखा कि इस तरह सही शिक्षा और श्रद्धापूर्वक आराधना अर्चना से कैथलिक विश्वासी धर्म विधिक प्रार्थनाओं के लिए तत्पर रहेंगे। इसके अलावा पवित्र रहस्यों के सम्मानजनक और गरिमापूर्ण समारोह को बढ़ावा देने के लिए हमें अनुमोदित पाठों और निर्देशों के प्रति वफादारी की जरूरत पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि यह सम्मान ईश्वर के प्रति खुलेपन और विश्वास की आंतरिक मनोवृत्ति से प्रस्फुटित होवे तथा कलीसियाई सहभागिता के प्रति विनम्रता और सत्यनिष्ठा दर्शाए। म्यांमार में येसु धर्म समाज के प्रांताध्यक्ष फादर गिरीश संत्यागो कहते हैं कि वासो बौद्ध काल संघर्ष से जूझ रहे म्यांमार में ख्रिस्तानुयायियों और बौद्ध धर्मानुयायियों को संवाद, दया और पुनर्मिलन की ओर एक साझा रास्ता दिखा सकता है। बौद्ध वासा गहन ध्यान, आध्यात्मिक सोच और भिक्षुओं को प्रसाद चढ़ाने की अवधि की शुरुआत का प्रतीक है। बारिश के मौसम में 3 महीने तक चलने वाला वासो आम तौर पर जून या जुलाई माह में पूर्णिमा के दिन शुरू होता है। फादर गिरीश ने कहा कि लगातार राजनीतिक अस्थिरता और मानवीय चुनौतियों का सामना कर रहे म्यांमार में बौद्ध धर्मानुयायियों का वासा काल अंतरधार्मिक मुलाकातों और साझा शांति निर्माण के लिए एक सार्थक पुल बन सकता है। और रोम स्थित संत इजिदियो समुदाय ने युद्ध और संघर्षों से घिरे विश्व में इटली के कई शहरों में बेघर लोगों, शरणार्थियों और वयोवृद्धों के लिए 15 अगस्त को मां मरियम के स्वर्गोत्थान महापर्व के दिन पारंपरिक मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था की है। संत इजिदियो लोकोपकारी समुदाय के लिए 15 अगस्त के दिन कई ऐसी पहलें शुरू की गई हैं जो इन दिनों के अकेलेपन और असहनीय गर्मी सहने वालों तथा निर्धनों, बेघर लोगों और सबसे कमजोर लोगों पर अधिक ध्यान देने की अपील करेंगी। संत इजिदियो समुदाय की विज्ञप्ति के अनुसार ऐसे विश्व में जहां सबसे कमजोर लोगों को नजरअंदाज करने का खतरा बना हुआ है, यह पहल युद्ध और संघर्ष के समय में शांति और एकजुटता का संदेश प्रदान करेगी। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पवित्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के पहला भेद, गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल।

0: येसु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
1: हे

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमेशा,
0: और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
1: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं।

0: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति

0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: शक्तिमती कुमारी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: दयालु कुमारी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: धर्मनिष्ठ कुमारी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: हमारे आनंद का मूल
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: पवित्र आत्मा का मंदिर
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: आदरणीय पात्र
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: भक्ति का उत्तम पात्र
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: आध्यात्मिक गुलाब
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: दाऊद का गढ़
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: हस्तिदंत का गढ़
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: स्वर्ण मंदिर
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: संधि की मंजूषा
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: भोर का तारा
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: रोगियों का स्वास्थ्य
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: पापियों की शरण
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: दुखियों का दिलासा
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: ख्रिस्तियों की सहायता
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: स्वर्गदूतों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: धर्मपुरखों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: नबियों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: प्रेरितों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: शहीदों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: धर्मवीरों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: संतों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: अति पवित्र माला की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: शांति की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है
0: प्रभु हमें क्षमा कर।
1: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है
0: प्रभु हमारी सुन।
1: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है
0: हम पर दया कर।
1: हम प्रार्थना करें।

0: ना द्वारा
1: हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप रेडियो का दिया गया प्रवचन भक्ति गीत एवं समाचार कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदहवें ने कस्तल गंदोल्फो के विला नोवा पल्ली में माता मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण का ख्रिस्त्याग अर्पित किया। संत पापा ने अपने प्रवचन में कहा कि मैं

अपार खुशी से आप सबों के संग पुनः इस वर्ष माता मरियम के स्वर्गोद ग्रहण का महोत्सव मनाता हूँ। कलिसक धर्म सिद्धांत हमें यह शिक्षा देती है कि पृथ्वी पर अपनी जीवन यात्रा समाप्त करने के बाद वह शरीर और आत्मा में स्वर्गीय महिमा में उठा ली जाती है। इस भांति यह हमें निष्कलंक गर्भागमन में उन्हें प्राप्त सर्वश्रेष्ठ कृपा की परिपूर्णता के रहस्य को व्यक्त करता है। संत पापा लियो ने कहा कि इस कारण बहुत से कला के कार्य उन्हें सुंदर युवा नारी स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, जो पृथ्वी पर अपने जीवन की समाप्ति उपरांत शारीरिक रूप में स्वर्ग की ओर उठाई जाती है। इन कलाकृतियों को हम प्रकाशना ग्रंथ की पुस्तिका में वर्णित दृश्य से प्रभावित पाते हैं, जिसे हमने पहले पाठ में सुना। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। यह हमारे लिए इस बात की ओर इंगित कराता है कि मरियम के हृदय में स्वर्ग और पृथ्वी, समय और अनंत का मिलन होता है। इस पृथ्वी पर यह निशानी हमारे समय के बीतते अनुभवों के संग विरोधाभाव जान पड़ती है। जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं, हमारे शरीर फुर्तीले नहीं रह जाते हैं, हमारी त्वचा ताजी नहीं रह जाती है, बल्कि हम उनमें बुढ़ापे की निशानी को पाते हैं। हमारे केश चमकदार नहीं रह जाते हैं, अपितु वे भूरे और सफेद हो जाते हैं। अतः कलिसियाओं की वेदी में प्रस्तुत किए गए सुंदर युवा नारी के संग हम अपनी कौन सी समानता को पाते हैं? संत पापा लियो ने कहा कि इस तथ्य को समझने हेतु हमें अपने को दो निशानियों के संग संयुक्त करने की जरूरत है, ईश्वर की माता का अनश्वर शरीर और उनका निष्कलंक हृदय। यह हृदय की पवित्रता है जो मरियम में और हम में ईश्वरीय कृपा में व्याप्त रहती है, जो पूरे व्यक्ति को प्रज्वलित और परिवर्तित करती है। यह हमें स्वर्गराज की महिमा में ले चलती है। मरियम का शरीर और आत्मा में महिमान्वित किया जाना हमें इस बात की शिक्षा देती है कि हमारी सच्ची सुंदरता बुढ़ापे की निशानी को छुपाने में नहीं है, लेकिन प्रेम की निशानी को व्यक्त करने में है, जो कभी खत्म नहीं होती, जिसका प्रभाव हमारे शरीर में भी होता है। इस मनोभाव से हम उन कई सौंदर्य के मानकों को पुनः देखने के लिए बुलाए जाते हैं जो ज्यादातर खुशीवादी और उपभोक्तावादी प्रकृति के हैं, जिन्हें दुनिया हम पर थोपती है। ये मानक हमें चिंतामय चाहत के उलझन में डाल देती हैं। फलस्वरूप हम अपनी शक्ति को उन चीजों में व्यय करते जो सदैव बनी नहीं रहती हैं। हम अपने रोज दिन के जीवन में उन लोगों से मिलते हैं जिनके चेहरे में उम्र और दुख चिन्हित हैं, यद्यपि वे स्थिरता, करुणा और शांति को अपने चारों ओर प्रसारित करते हैं। वैसे ही हम दूसरों को देखते हैं जो बाह्य रूप में सुंदर दिखते, लेकिन उनका हृदय कठोर और ठंडा है। सच्ची सुंदरता किन बातों में निहित है उन्हें देखना सहज है। वहीं दूसरी ओर हम अब तक एक परिवर्तन, क्षमा और चंगाई की आवश्यकता को पाते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि यदि हम सच्चे अर्थ में दिव्य सुंदरता को खोजना और उसे अपने में पोषित करने की चाह रखते हैं, जो हमें घेरे रहती है और जिसके लिए हम बनाए गए हैं, जिसे हमें दूसरों के संग साझा करना है, तो हमें उसे एक बुजुर्ग की झुर्रियों और एक बालक के कोमल चेहरे में देखने हेतु सीखने की जरूरत है। हम उसे एक प्रौढ़ व्यक्ति में और एक युवा के जीवन की सजीवता में, उसे कपड़ों और औजार साथ ही त्योहारों के श्रृंगारों में देखने की जरूरत है। हमें उन्हें अद्वितीय प्रेम की कहानियों में सुनने की जरूरत है, जो सच्चाइयों को हमें बतलाते हैं, जहां हम स्वर्ग की छोटी झलकों को पहचानते हैं। प्रेम मानव का अति सुंदर श्रृंगार है। प्रेम हमें रूपांतरित करता, बदलता, योग्य बनाता और हमें ऊपर उठाता है। यह हमें भार विहीन, स्वतंत्र और ईश्वर के निकट लाता है, यहाँ तक कि हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में भी। संत पापा ने कहा, स्वर्गोद्ग्रहण के रहस्य पर चिंतन करते हुए उसके अर्थ को समझने हेतु संत पापा पॉल छठवें कहते हैं कि हम पृथ्वी और भौतिक भाषा में उपयोग की जाने वाली अपनी अभिव्यक्तियों को अतिशयोक्ति और पूर्णता में बदलें, जिससे हम दिव्य की कल्पना एक छोटे रूप में कर सकें।

ईश्वर की माता में अलौकिक और लौकिक के बीच मिलन के संबंध में संत पापा फ्रांसिस लिखते हैं, मरियम एक अस्तबल को यीशु के घर में बदलने की योग्यता रखती, जिसमें गरीब बच्चे को लपेटने का एक वस्त्र और एक अपार प्रेम था। संत पापा ने कहा कि नाजरेत की कुमारी मरियम ने जिस चमत्कार को अपने निर्दोष हृदय में अनुभव किया, जो चरम सीमाओं का मिलन है, वह उसे स्वर्ग की महिमा हेतु अग्रसर करता है, जैसे कि वह अपने ईश महिमा में व्यक्त करती है। इस ईश गुणगान में अपने नम्र विश्वास की अभिव्यक्ति द्वारा ईश्वर की माता हमें अपनी सरलता में महिमामय रहस्य को व्यक्त करती है, जैसे कि ईश्वर उनमें मानव बने जिससे वे मानवता को बचा सके। इस तरह दिव्य समय के साथ मुक्ति के मार्ग को हमारे लिए वे खोलते हैं। इसके साथ ही एक नम्र सेविका के रूप में संत पापा पॉल छठवें कहते हैं कि मरियम हमारे लिए नम्र आयाम को व्यक्त करती है, जिसके द्वारा हमारा मेल भी ईश्वर से हो सकता है। जिस रहस्य का हम आनंद मनाते हैं, संत पापा ने कहा, उसकी महानता को जानने के लिए हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा इससे मिलन तब होता है जब कभी हम अपने में सच्ची करुणा को पाते हैं। उदाहरण के लिए, एक माता और पिता की आंखें जो लंबे समय के बाद घर लौटते हैं, थके होते हुए भी वे अपनी संतानों के संग खुशी का अनुभव करते हैं। दादा दादियों और नाना नानियों के चेहरे अपने दर्द और बुजुर्गावस्था के दुखों में भी वे नाती पोतों की देखरेख में एक आश्चर्यजनक शक्ति से अपने को भरा पाते हैं। युवाओं की निष्ठा, जहां वे नैतिकता और स्थिरता में बढ़ने की कोशिश करते हैं, वे अपने में लाभ से परे जाने को तैयार रहते हैं। अंततः बहुत सारे नर नारियों के दैनिक जीवन में विश्वास और समर्पण इस पृथ्वी पर स्वर्ग को और स्वर्ग को पृथ्वी के निकट लाती है। प्रिय मित्रों, संत पापा लियो ने कहा, स्वर्गोद्ग्रहण में हमारी कुमारी मरियम का चेहरा अद्वितीय है। यह किसी भी संभव स्वरूप की प्रस्तुति से परे है, और इसके बावजूद यह हमारे लिए परिचित है। हम उनके चेहरे को अपनी बगल में बैठे व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं, उन भाई बहनों में जिनके संग हम विश्वास में अपने जीवन को साझा करते हैं। यही कारण है कि विश्वासियों का समुदाय उस नारी को प्रकाशन की पुस्तिका में देखता है, और द्वितीय वैटिकन महासभा मरियम की व्याख्या कलिसियाई शुरुआत की निशानी स्वरूप देखती है, आशा और सांत्वना की एक निश्चित निशानी स्वरूप। उनके मानवीय प्रकृति में ईश्वर की कृपा से हम अपने स्वरूप को देखते हैं, अतः हम भी उस कृपापूर्ण जीवन को जीने हेतु बुलाए गए हैं, जिसे उन्होंने जिया और अपनी महिमा में साझा किया। ख्रिस्त के पुनरुत्थान की चर्चा करते हुए संत अगुस्टिन ख्रिस्तियों से आग्रह करते हैं कि वे उसे अपने जीवन की दिशा और केंद्र बिंदु बनाएं। वे कहते हैं, ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे जिससे वे पुनः ना मारें, हम दिशा बदल सकें, ज्योति का अनुसरण करें, उसी स्थान से उठने की शुरुआत करें जहाँ से वे उठे। संत पापा लियो ने कहा कि आइए हम इस निमंत्रण को स्वीकार करें, हम उस पुनर्जीवित यीशु की ज्योति का अनुसरण करें और अपने जीवन यात्रा को बदलें यदि ऐसा करने की जरूरत है। हम विशेष रूप से आज ऐसा करें, मरियम की ओर निहारते हुए, जिन्हें ईश्वर ने शरीर और आत्मा में महिमान्वित किया है और जिसे उन्होंने माता निर्देशिका हमारी जीवन यात्रा में मित्र और स्वर्ग राज्य के मार्ग में एक संरक्षिका के रूप में दिया है।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कुंवारी मरियम के स्वर्गोत ग्रहण महापर्व के अवसर पर पोप लियो चौदहवें ने चिंतन किया कि यह मानव के अंतिम लक्ष्य अनंत जीवन को प्रकट करता है। पोप लियो चौदहवें ने 15 अगस्त कुंवारी मरियम के स्वर्गोत ग्रहण महापर्व के अवसर पर कस्तिल गंदोल्फो में देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। उन्होंने प्रार्थना से पहले विश्वासियों को संबोधित कर कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम धन्य कुंवारी मरियम के स्वर्गोत ग्रहण का महापर्व मना रहे हैं। पोप ने इस विश्वास के रहस्य पर चिंतन करने के लिए उन दो प्रतीकात्मक मॉडल को प्रस्तुत किया जिनका इस्तेमाल कलाकारों ने सदियों से इस घटना को दिखाने के लिए किया है। पहला, ईश माता के निद्रावस्था की तस्वीर। उन्हें एक ताबूत पर लेटे हुए मौत की नींद सोते हुए दिखाया गया है। उनके चारों ओर प्रेरित प्रार्थना की मुद्रा में उनका सम्मान करते हैं और बीच में पुनर्जीवित यीशु हैं, जो एक नवजात शिशु की तरह मरियम की आत्मा को अपनी गोद में लिए हुए हैं। संत पापा ने कहा, यीशु उन्हें ईश्वर की महिमा में अपने साथ ले गए, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। इस तरह प्रभु ने अपनी माँ के लिए वह वादा पूरा किया जो उन्होंने अपने सभी मित्रों से किया था, मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। संत पापा ने कहा, पहला मॉडल उस मुख्य सच्चाई को दिखाता है कि मरने और पुनर्जीवित होने के बाद ख्रिस्त ही हमें उस मंजिल तक ले जाते हैं जिसके लिए हमें बनाया गया है, अर्थात अनंत जीवन। हाल स्वर्ग उठा ली गई अपने व्यक्तित्व की संपूर्णता में। महिला जिसने पृथ्वी पर शब्द के शरीर धारण में मांस और रक्त दिया और प्रेम बलिदान में पूरी तरह एक होने तक उनका अनुसरण किया और फिर उनके द्वारा हमेशा के लिए महिमा में ले लिए गए। संत पापा ने कहा कि यह तस्वीर हमें अपने अंतिम लक्ष्य के बारे चिंतन करने का मौका देती है। देवदूत प्रार्थना के बाद संत पापा ने उन सभी लोगों को मरियम की मध्यस्थता को सपोर्ट किया जिन्हें आशा और सांत्वना की आवश्यकता है। पोप ने हाल ही में आए भूकंप से प्रभावित कोलंबिया के लोगों के लिए भी अपनी प्रार्थना दोहराई। भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस रोम स्थित भारतीय दूतावास में देशभक्ति एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भारतीय समुदाय के सदस्य, दूतावास के अधिकारी और खास मेहमान इस ऐतिहासिक मौके को मनाने के लिए एकत्रित हुए। इटली और सन मरीनो में भारत की राजदूत वाणी राव ने सुबह 8 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान गाया गया, जिससे माहौल देश की आज़ादी और तरक्की के लिए गर्व एवं आभार से भर गया। अपने भाषण में राजदूत राव ने इटली में रहने वाले भारतीय समुदाय की सेवा और समर्थन के लिए दूतावास के चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए भारत और इटली के बीच मजबूत एवं बढ़ते संबंधों के बारे में चर्चा की।
1: पापुआ न्यू गिनी में 14 से 17 अगस्त तक बोगनविले धर्म प्रांत के उत्तरी क्षेत्र में कैथोलिक मिशनरी उपस्थिति का 125वां साल गिरह मना रहा है। कलीसिया ने देश में एक सदी से भी ज्यादा समय तक मुश्किलों और लड़ाइयों का सामना किया है और यह 35 पल्लियों में 2,00,000 से ज्यादा कैथोलिकों का एक जीवंत स्थानीय समुदाय के तौर पर विकसित हुआ है। पापुआ न्यू गिनी दुनिया के सबसे ज्यादा सांस्कृतिक रूप से अलग अलग तरह के देशों में से एक है, जहां 800 से ज्यादा भाषाएं और कई जाति और आदिवासी समुदाय है जो एक दूसरे से भिन्न है और गहरी एकता का जरिया है। उधर आज सुबह शनिवार पूर्वी इंडोनेशिया में आए 7.7 तीव्रता वाले भूकंप में मरने वालों की संख्या कम से कम 38 हो गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के नए अपडेट के मुताबिक 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 11 अन्य को मामूली चोटें आई हैं और लगभग 2,000 लोग बेघर हो गए हैं। भूकंप का केंद्र फ्लोरेंस द्वीप के पास एंडे शहर से लगभग 68 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर की गहराई पर था। अधिकारियों ने शुरू में कई प्रांतों के लिए

सुनामी की चेतावनी दी थी और तटीय इलाकों के लोगों से ऊंची जगहों पर जाने को कहा था। बाद में निगरानी प्रणालियों द्वारा समुद्र के स्तर पर कोई खास बदलाव न पाए जाने पर चेतावनी हटा ली गई। बिजली जाने और संचार की दिक्कतों के कारण जानकारी इकट्ठा करने और खोज एवं बचाव कार्य धीमे चल रहे हैं। कई हॉस्पिटल से मरीजों को सावधानी के तौर पर बाहर निकाला गया और कुछ समय के लिए इलाज की जगहें बनाई गईं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने भी मदद पहुंचाने और मुश्किल जगहों से लोगों को निकालने में मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा। उधर यूक्रेन की नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर पिछले महीने संघर्ष से 183 यूक्रेनी बच्चे प्रभावित हुए। जून की तुलना में जब 127 पीड़ित थे, यह 50% की बढ़ोतरी दिखाता है और जमीन पर युद्ध बिना रुके जारी है। यूक्रेन के मारहेंस शहर में एक रिहायशी भवन पर हुए रूसी हमले में एक 3 महीने के बच्चे की मौत हो गई। एक नवजात एक ऐसे युद्ध का सबसे नया शिकार जो सबसे छोटे बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है। इस हमले में 11 और लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 7 को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें 2 और छोटे बच्चे भी हैं, 5 और 12 साल के। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि हाल के हमलों में सबसे छोटे बच्चों को निशाना बनाया गया। अकेले जुलाई में रूसी युद्ध के कारण यूक्रेन में 183 बच्चे मारे गए या घायल हुए। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकी

0: अन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है स्वर्ग उद्ग्रहण ख्रिस्त्याग में संत पापा लियो का दिया गया प्रवचन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो 14 महीने कस्तल गंदोल्फो के विला नोवा पल्ली में माता मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण का ख्रिस्त्याग अर्पित किया। संत पापा ने अपने प्रवचन में कहा कि मैं अपार खुशी से आप सबों के संग पुनः इस वर्ष माता मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण का महोत्सव मनाता हूँ। कलिसक धर्म सिद्धांत हमें यह शिक्षा देती है कि पृथ्वी पर अपनी जीवन यात्रा समाप्त करने के बाद वह शरीर और आत्मा में स्वर्गीय महिमा में उठा ली जाती है। इस भांति यह हमें निष्कलंक गर्भागमन में उन्हें प्राप्त सर्वश्रेष्ठ कृपा की परिपूर्णता के रहस्य को व्यक्त करता है। संत पापा लियो ने कहा कि इस कारण बहुत से कला के कार्य उन्हें सुंदर युवा नारी स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, जो पृथ्वी पर अपने जीवन की समाप्ति उपरांत शारीरिक रूप में स्वर्ग की ओर उठाई जाती है। इन कलाकृतियों को हम प्रकाशना ग्रंथ की पुस्तिका में वर्णित दृश्य से प्रभावित पाते हैं, जिसे हमने पहले पाठ में सुना। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। यह हमारे लिए इस बात की ओर इंगित कराता है कि मरियम के हृदय में स्वर्ग और पृथ्वी, समय और अनंत का मिलन होता है। इस पृथ्वी पर यह निशानी हमारे समय के बीतते अनुभवों के संग विरोधाभाव जान पड़ती है। जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं, हमारे शरीर फुर्तीले नहीं रह जाते हैं, हमारी त्वचा ताजी नहीं रह जाती है, बल्कि हम उनमें बुढ़ापे की निशानी को पाते हैं। हमारे केश चमकदार नहीं रह जाते हैं, अपितु वे भूरे और सफेद हो जाते हैं। अतः कलिसियाओं की वेदी में प्रस्तुत किए गए सुंदर युवा नारी के संग हम अपनी कौन सी समानता को पाते हैं? संत पापा लियो ने कहा कि इस तथ्य को समझने हेतु हमें अपने को दो निशानियों के संग संयुक्त करने की जरूरत है, ईश्वर की माता का अनश्वर शरीर और उनका निष्कलंक हृदय। यह हृदय की पवित्रता है जो मरियम में और हम में ईश्वरीय कृपा में व्याप्त रहती है, जो पूरे व्यक्ति को प्रज्वलित और परिवर्तित करती है। यह हमें स्वर्ग राज की महिमा में ले चलती है। मरियम का शरीर और आत्मा में महिमान्वित किया जाना हमें इस बात की शिक्षा देती है कि हमारी सच्ची सुंदरता बुढ़ापे की निशानी को छुपाने में नहीं है, लेकिन प्रेम की निशानी को व्यक्त करने में है, जो कभी खत्म नहीं होती, जिसका प्रभाव हमारे शरीर में भी होता है। इस मनोभाव से हम उन कई सौंदर्य के मानकों को पुनः देखने के लिए बुलाए जाते हैं जो ज्यादातर खुशीवादी और उपभोक्तावादी प्रकृति के हैं, जिन्हें दुनिया हम पर थोपती है। ये मानक हमें चिंतामय चाहत के उलझन में डाल देती हैं। फलस्वरूप हम अपनी शक्ति को उन चीजों में व्यय करते जो सदैव बनी नहीं रहती हैं। हम अपने रोज दिन के जीवन में उन लोगों से मिलते हैं जिनके चेहरे में उम्र और दुख चिन्हित हैं, यद्यपि वे स्थिरता, करुणा और शांति को अपने चारों ओर प्रसारित करते हैं। वैसे ही हम दूसरों को देखते हैं जो बाह्य रूप में सुंदर दिखते, लेकिन उनका हृदय कठोर और ठंडा है। सच्ची सुंदरता किन बातों में निहित है उन्हें देखना सहज है। वहीं दूसरी ओर हम अब तक एक परिवर्तन, क्षमा और चंगाई की आवश्यकता को पाते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि यदि हम सच्चे अर्थ में दिव्य सुंदरता को खोजना और उसे अपने में पोषित करने की चाह रखते हैं जो हमें घेरे रहती है और जिसके लिए हम बनाए गए हैं, जिसे हमें दूसरों के संग साझा करना है, तो हमें उसे एक बुजुर्ग की झुर्रियों और एक बालक के कोमल चेहरे में देखने हेतु सीखने की जरूरत है। हम उसे एक प्रौढ़ व्यक्ति

और एक युवा के जीवन की सजीवता में उसे कपड़ों और औजार साथ ही त्योहारों के श्रृंगारों में देखने की जरूरत है। हमें उन्हें अद्वितीय प्रेम की कहानियों में सुनने की जरूरत है जो सच्चाइयों को हमें बतलाते हैं, जहां हम स्वर्ग की छोटी झलकों को पहचानते हैं। प्रेम मानव का अति सुंदर श्रृंगार है। प्रेम हमें रूपांतरित करता, बदलता, योग्य बनाता और हमें ऊपर उठाता है। यह हमें भार विहीन, स्वतंत्र और ईश्वर के निकट लाता है, यहाँ तक कि हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में भी। संत पापा ने कहा, स्वर्गोद्ग्रहण के रहस्य पर चिंतन करते हुए उसके अर्थ को समझने हेतु संत पापा पॉल छठवें कहते हैं कि हम पृथ्वी और भौतिक भाषा में उपयोग की जाने वाली अपनी अभिव्यक्तियों को अतिशयोक्ति और पूर्णता में बदलें, जिससे हम दिव्य की कल्पना एक छोटे रूप में कर सकें। ईश्वर की माता में अलौकिक और लौकिक के बीच मिलन के संबंध में संत पापा फ्रांसिस लिखते हैं, मरियम एक अस्तबल को यीशु के घर में बदलने की योग्यता रखती, जिसमें गरीब बच्चे को लपेटने का एक वस्त्र और एक अपार प्रेम था। संत पापा ने कहा कि नाजरेत की कुमारी मरियम ने जिस चमत्कार को अपने निर्दोष हृदय में अनुभव किया, जो चरम सीमाओं का मिलन है, वह उसे स्वर्ग की महिमा हेतु अग्रसर करता है, जैसे कि वह अपने ईश महिमा में व्यक्त करती है। इस ईश गुणगान में अपने नम्र विश्वास की अभिव्यक्ति द्वारा ईश्वर की माता हमें अपनी सरलता में महिमामय रहस्य को व्यक्त करती है, जैसे कि ईश्वर उनमें मानव बने, जिससे वे मानवता को बचा सकें। इस तरह दिव्य समय के साथ मुक्ति के मार्ग को हमारे लिए वे खोलते हैं। इसके साथ ही एक नम्र सेविका के रूप में संत पापा पॉल छठवें कहते हैं कि मरियम हमारे लिए नम्र आयाम को व्यक्त करती है, जिसके द्वारा हमारा मेल भी ईश्वर से हो सकता है। जिस रहस्य का हम आनंद मनाते हैं, संत पापा ने कहा, उसकी महानता को जानने के लिए हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा इससे मिलन तब होता है जब कभी हम अपने में सच्ची करुणा को पाते हैं। उदाहरण के लिए, एक माता और पिता की आंखें जो लंबे समय के बाद घर लौटते हैं, थके होते हुए भी वे अपनी संतानों के संग खुशी का अनुभव करते हैं। दादा दादियों और नाना नानियों के चेहरे अपने दर्द और बुजुर्गावस्था के दुखों में भी वे नाती पोतों की देख रेख में एक आश्चर्यजनक शक्ति से अपने को भरा पाते हैं। युवाओं की निष्ठा, जहां वे नैतिकता और स्थिरता में बढ़ने की कोशिश करते हैं, वे अपने में लाभ से परे जाने को तैयार रहते हैं। अंततः बहुत सारे नर नारियों के दैनिक जीवन में विश्वास और समर्पण इस पृथ्वी पर स्वर्ग को और स्वर्ग को पृथ्वी के निकट लाती है। प्रिय मित्रों, संत पापा लियो ने कहा, स्वर्गोद्ग्रहण में हमारी कुमारी मरियम का चेहरा अद्वितीय है। यह किसी भी संभव स्वरूप की प्रस्तुति से परे है और इसके बावजूद यह हमारे लिए परिचित है। हम उनके चेहरे को अपनी बगल में बैठे व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं, उन भाई बहनों में जिनके संग हम विश्वास में अपने जीवन को साझा करते हैं। यही कारण है कि विश्वासियों का समुदाय उस नारी को प्रकाशन की पुस्तिका में देखता है और द्वितीय वैटिकन महासभा मरियम की व्याख्या कलिसियाई शुरुआत के निशानी स्वरूप देखती है, आशा और सांत्वना की एक निश्चित निशानी स्वरूप। उनके मानवीय प्रकृति में ईश्वर की कृपा से हम अपने स्वरूप को देखते हैं, अतः हम भी उस कृपापूर्ण जीवन को जीने हेतु बुलाए गए हैं, जिसे उन्होंने जिया और अपनी महिमा में साझा किया। ख्रीस्त के पुनरुत्थान की चर्चा करते हुए संत अगस्टिन ख्रिस्तियों से आग्रह करते हैं कि वे उसे अपने जीवन की दिशा और केंद्र बिंदु बनाएं। वे कहते हैं, ख्रीस्त मृतकों में से जी उठे, जिससे वे पुनः ना मारे, हम दिशा बदल सकें, ज्योति का अनुसरण करें, उसी स्थान से उठने की शुरुआत करें जहां से वे उठे। संत पापा लियो ने कहा कि आइए हम इस निमंत्रण को स्वीकार करें, हम उस पुनर्जीवित यीशु की ज्योति का अनुसरण करें और अपने जीवन यात्रा को बदलें, यदि ऐसा करने की जरूरत है। हम विशेष रूप से आज ऐसा करें, मरियम की ओर निहारते हुए, जिन्हें ईश्वर ने शरीर और आत्मा में महिमान्वित किया है।
और जिसे उन्होंने माता

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कुंवारी मरियम के स्वर्गोत ग्रहण महापर्व के अवसर पर पोप लियो 14वें ने चिंतन किया कि यह मानव के अंतिम लक्ष्य अनंत जीवन को प्रकट करता है। पोप लियो 14वें ने 15 अगस्त कुंवारी मरियम के स्वर्गोत ग्रहण महापर्व के अवसर पर कस्तिल गंदोल्फो में देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। उन्होंने प्रार्थना से पहले विश्वासियों को संबोधित कर कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम धन्य कुंवारी मरियम के स्वर्गोत ग्रहण का महापर्व मना रहे हैं। पोप ने इस विश्वास के रहस्य पर चिंतन किए गए जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। इस तरह प्रभु ने अपनी मां के लिए वह वादा पूरा किया जो उन्होंने अपने सभी मित्रों से किया था, मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। संत पापा ने कहा, पहला मॉडल उस मुख्य सच्चाई को दिखाता है कि मरने और पुनर्जीवित होने के बाद ख्रिस्त ही हमें उस मंजिल तक ले जाते हैं जिसके लिए हमें बनाया गया है, अर्थात अनंत जीवन। हाल में बनी तस्वीर जो पश्चिम में विकसित हुई है, कुंवारी मरियम को पूरे कद में स्वर्ग में रोशनी से लिपटी हुई दूतों और संतों के बीच दिखाती है। तस्वीर के केंद्र में कुंवारी मरियम का महिमा मंडित शरीर है, जैसा कि प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है। संत पापा ने गौर किया कि कुछ कलाकारों ने दोनों विचारों को मिलाकर तस्वीर के ऊपरी भाग में महिमा मंडित माता मरियम को दिखाया है और नीचे उनकी खाली कब्र को, जो अक्सर रंग बिरंगे फूलों से भरी है, और स्वर्ग में प्रेरित उन्हें देख रहे हैं। दूसरे मॉडल के बारे बतलाते हुए संत पापा ने कहा, दूसरा मॉडल उस सच्चाई को दिखलाता है कि मरियम शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग उठा ली गई अपने व्यक्तित्व की संपूर्णता में। महिला जिसने पृथ्वी पर शब्द के शरीर धारण में मांस और रक्त दिया और प्रेम बलिदान में पूरी तरह एक होने तक उनका अनुसरण किया और फिर उनके द्वारा हमेशा के लिए महिमा में ले ली गई। संत पापा ने कहा कि यह तस्वीर हमें अपने अंतिम लक्ष्य के बारे चिंतन करने का मौका देती है। देवदूत प्रार्थना के बाद संत पापा ने उन सभी लोगों को मरियम की मध्यस्थता को सपोर्ट किया जिन्हें आशा और सांत्वना की आवश्यकता है। पोप ने हाल ही में आए भूकंप से प्रभावित कोलंबिया के लोगों के लिए भी अपनी प्रार्थना दोहराई। भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस रोम स्थित भारतीय दूतावास में देशभक्ति एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भारतीय समुदाय के सदस्य, दूतावास के अधिकारी और खास मेहमान इस ऐतिहासिक मौके को मनाने के लिए एकत्रित हुए। इटली और सैन मरिनो में भारत की राजदूत वाणी राव ने सुबह 8 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान गाया गया जिससे माहौल देश की आजादी और तरक्की के लिए गर्व एवं आभार से भर गया। अपने भाषण में राजदूत राव ने इटली में रहने वाले भारतीय समुदाय की सेवा और समर्थन के लिए दूतावास के चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए भारत और इटली के बीच मजबूत एवं बढ़ते संबंधों के बारे में चर्चा की।
1: पापुआ न्यू गिनी में 14 से 17 अगस्त तक बोगनविले धर्म प्रांत के उत्तरी क्षेत्र में कैथोलिक मिशनरी उपस्थिति का 125वां साल गिरह

अपना रहा है। कलीसिया ने देश में एक सदी से भी ज्यादा समय तक मुश्किलों और लड़ाइयों का सामना किया है और यह 35 पल्लियों में 2 लाख से ज्यादा कैथोलिकों का एक जीवंत स्थानीय समुदाय के तौर पर विकसित हुआ है। पापुआ न्यू गिनी दुनिया के सबसे ज्यादा सांस्कृतिक रूप से अलग अलग तरह के देशों में से एक है, जहां 800 से ज्यादा भाषाएं और कई जाति और आदिवासी समुदाय है जो एक दूसरे से भिन्न है और गहरी एकता का जरिया है। उधर आज सुबह शनिवार पूर्वी इंडोनेशिया में आए 7.7 तीव्रता वाले भूकंप में मरने वालों की संख्या कम से कम 38 हो गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के नए अपडेट के मुताबिक 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 11 अन्य को मामूली चोटें आई हैं और लगभग 2000 लोग बेघर हो गए हैं। भूकंप का केंद्र फ्लोरेंस द्वीप के पास इंडे शहर से लगभग 68 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर की गहराई पर था। अधिकारियों ने शुरू में कई प्रांतों के लिए सुनामी की चेतावनी दी थी और तटीय इलाकों के लोगों से ऊंची जगहों पर जाने को कहा था। बाद में निगरानी प्रणालियों द्वारा समुद्र के स्तर पर कोई खास बदलाव न पाए जाने पर चेतावनी हटा ली गई। बिजली जाने और संचार की दिक्कतों के कारण जानकारी इकट्ठा करने और खोज एवं बचाव कार्य धीमे चल रहे हैं। कई हॉस्पिटल से मरीजों को सावधानी के तौर पर बाहर निकाला गया और कुछ समय के लिए इलाज की जगहें बनाई गईं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने भी मदद पहुंचाने और मुश्किल जगहों से लोगों को निकालने में मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा। उधर यूक्रेन की नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर पिछले महीने संघर्ष से 183 यूक्रेनी बच्चे प्रभावित हुए। जून की तुलना में जब 127 पीड़ित थे, यह 50% की बढ़ोतरी दिखाता है और जमीन पर युद्ध बिना रुके जारी है। यूक्रेन के मारहेंस शहर में एक रिहायशी भवन पर हुए रूसी हमले में एक 3 महीने के बच्चे की मौत हो गई। एक नवजात एक ऐसे युद्ध का सबसे नया शिकार जो सबसे छोटे बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है। इस हमले में 11 और लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 7 को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें 2 और छोटे बच्चे भी हैं, 5 और 12 साल के। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि हाल के हमलों में सबसे छोटे बच्चों को निशाना बनाया गया। अकेले जुलाई में रूसी युद्ध के कारण यूक्रेन में 183 बच्चे मारे गए या घायल हुए। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।